बिंदास हमारी जियो बिंदा सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तीन वड्यारी कोई नाओ ना जाने मेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तीन वड्यारी कोई नाओ ना जाने मेरा वाहिगुरु बोलो जी वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लही त्याय हे रंगल गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदरों सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण दयाईया जह डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करनोन दयावा ताई सब थाई होए साय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बलो जी वाहिगुरू पंजा प्यारियां चौवां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया बन छकिया दे चलाई तेग वाही देख कैन डट कीता तिना ब्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेता शीस दते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया दे जड़ी आरिया ना चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासन संग नंबाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतयावै चेतयावन का सदका सर्ब सुख हुआ जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां रशिया रियायता देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी साई खालसा

हे परमात्मा, भरम की हुंदा है? भरम दी की व्याख्या है? जैसा मानिया होए ना तैसा। भरम उहनूं कहिंदे ने, भुलेखा उहनूं कहिंदे ने, जो असी मन लैंदे हां पर उह हुंदा नहीं, हुंदा उस तो उल्ट है, इही भरम है। असी मनदे कुछ होर हां, हुंदा कुछ होर है। असी सोचते कुछ होर हाँ, हो कुछ होर जाता है, ये भरम है। ये भरम की व्याख्या की है भगत रविदास जी ने। कबीर साहब जी ने भी अपने बचना विच आखिया, कबीर जो मैं चितवा ना करे, क्या मेरा चितव्या होए? अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। ये भगत कबीर जी का बोल है। भगत जी, भगत रविदास जी कहिंदे, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। नरपत नरां दा पति राजा, राजा सुता होया सी सिंघासन उत्ते, सुपना आया नींद दे विच, ते भिखारी बन के मंग रहा है, कदे किते जा रहा है कदे किते, क्योंकि भिखारी दी किरत है मंगना। भिखारी अपनी किरत दे मुताबक मंगदा है, भावें कोई उसनू बुरा भला कहिंदा है, मंदा कहिंदा है, बोलते कबूल भी बोलता है, लेकिन भिखारी दा सुभा बन गया है। कोई उसनू कौड़े वचन बोले, उहदा गुस्सा नहीं करदा, क्योंकि उहदी आदत पक चुकी है, उहदा सुभा बन गया है। राजे नूं नींद आई, सुते होए नूं सुपना आ गया, ते उह भिखारी बन गया। ये हालत साडी है। उह तां नींद विच सुपने विच सुता होया सी, ते भिखारी बन के दर दर दीआं ठोकरां खा रहा सी। कदे किसे दे द्वारे ते जांदा है, कदे किसे दे द्वारे ते जांदा है, कदे किसे दे द्वारे ते जांदा है। कितेओं तां खैर पै जांदी है, ते कितेओं उस दी बेपत्ती भी हुंदी है। बेइज्जती करके भी लोग मोड़ दिंदे ने भिखारी नूं। अज भी आपां देखदे हां, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। साड़ी अवस्था भी कुछ ऐसी ही बन गई है। राजा ते नींद विच सुपने विच भिख मंगदा है। भगत रविदास जी कहिंदे, हालत भरम विच, भुलेखे विच, मोह माया विच सुते हुए जीवां दी एवें ही है। साड़ी हालत इहो ही है। जीवन तां मिलिया सी बादशाहां वाला, सारियां तों कीमती, सारियां तों अमोलक, सारियां तों उत्तम। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। बड़े बोल आउणगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी दे अंदर। सो गत पई हमारी, इत्थे गत दा भाव है अवस्था, हमारी दा भाव है साडी अवस्था भी कुछ उस भिखारी वर्गी हो गई है। भटक रहे हैं, दर दर दीआं ठोकरां खा रहे हैं, कदे किसे द्वारे ते जांदे हाँ, कदे किसे द्वारे ते जांदे हाँ, कदे किसे द्वारे ते जांदे हाँ। जो असली घर है, जो अपना घर है, जिस घर नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने आख्या, थिर घर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। ये असली घर सी साडा, जिथे तू मन चित एकाग्र हो के बैठना सी, ये असली घर विच आना सी। वो सतगुरु का घर है, वह गुरु का द्वारा है। जिस गुरु दे थिर घर विच आ के सतगुरु ने तेरी जिंदगी दे कर्म ते आप ही सफले कर देने सन, सवार देने सन। अगली उदाहरण भगत रविदास जी ने दिती है, राज भयंग प्रसंग जैसे हैं, आप कछ मरम जनाया।

अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अका

बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति वे भूते कलंकंग बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो वस्त्र पाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भोगदे नमो जोग जोगेश्वर।

भगवती शंत प्रसाद कहते क्या सिद्धि सिख्या भिज पिसे क्या गण कर्मे क्या पंच परमे क्या भिज लू कह के आदित सु कह के अवधूत वर्ण के बेभूत करण के राजन प्रभ धर्म तुझ के आसुख वर्ण सर्वय पर्ण जगदंग कृतियं शत्रंग छत्री के ब्रह्म स्वरूप।

कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साजा है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कई सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है सर्वत्र राज है सर्वत्र सुख है सर्वत्र पोख है सर्वत्र त्राण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र भेस है कई सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वं कलिम है के परम फहीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशा सलाम सली खत्मो दाम में गनीमुल शिकस्ता है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में रजूल निदान है हरीफुल अजीम में रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अज अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बेभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है उंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गम त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्पागे सुसर्पानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है अशज है अछूत है किन्नर कुम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त स्वर प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त

अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सोनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चर प्रशन प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणु सर्वं त्राणु सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योगता सर्वं मुक्ता और सावल चंत व प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्म

करुणालय है, अर्काल है, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाके करण है, मन मानिया है, जग जानिया है, सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड खलखंड से परते पर है, करुणाकर है, जपा जप है,

अदरणीतृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है।

मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांतरूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंबे पूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो वास वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश गंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटह अनाथ प्रमाथ अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंत नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल गन अनामे समस्तुल निवासे निकाम बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुतर्म बेपूते सदा सचदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में

वासन मौत मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत दे समलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तुड़न हार सुबतन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे था।

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत यंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे।

दीने कहूँ फूर राजा हुए बैठा कहूँ सिम भयो शंकर अकैठा हो सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चम भवे आ जुगा स्वरूप सुजम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठपत उत्पत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तिया है ताकि काल निक नहीं है रक्षा हुई ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरि होता किताप तनक मैं हर हो रित सिद्ध कर्मों सब हुई दुष्ट।

जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहि सुरसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकन तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुपुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया,

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे

साहेब दे दर्दे रहन संगताइयां लगदा रहन खुशी दे मेले लगदा रहन खुशी दे मेले।